0: बदे जाम प्रजाए महला पहला
1: सब सुधक परम है दूजे लगे जाए जम्मन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों सबाहे नानक जिन गुरमुख बुझिया ना सूतक नाहे
2: पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाईया जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मेले ता नदरी आईया जात इस भाणा ता मन वसाईया पर हुक्म सखा धार विचों मार कड्डियां बुरियाईया सह तुठै नौ निंद पाईया सह तुठै नौ निंद पाईया।

पौड़िया पे करना क्यों कला पे तय धारी है, देखा कि अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सबको यही भारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साय मनो सारी है, अपन थी अपना आपे ही काज सवारी है।

0: गए मशक्कत कार नानक ते मुखे उजले केते छुटे ना जिने नाम ते आया गए मशक्कत कार नानक ते मुखे उजले केते छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोल जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद न सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाहे देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचिहारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुआसां नाल निभाए तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

जेहे जन ओट गहि प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरणे। जेहे नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मह गरने। जेहे गुरमान प्रभु लिवलाई, तेहे महा आनंद रस करिया। जेहे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई, ते नरक घोर मह परिया। जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा।

राखो प्रभु नानक दे कर, नानक दे कर हाथ। प्रभ जी तू मेरे प्राण अंधार है,

सकल जगत धंदे आया आंबरे आया वाद्य कर्महरूर कर्मी आपो अपनी केनेड़ के

सर्वठार मोह सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यों। सिमृत शस्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यों दोहरा।

दास गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दो ता गावह हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहै नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वज शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों जे सदियां एह वड़ियाईया कहै नानक सुन हो संत हो शब्द तर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनहो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पाए सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पार पूरे

कहते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पार पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वसतु पाइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाए नित नित रख उरे तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला

0: तरस पयो तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराउ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधि आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्या

मंज कुचजी अम्मावन डोसड़े हो क्यों सहुरावन जाओ जियो एक दो एक चढ़न दिया कौन जाने मेरा नाओ जियो जिनी सखी सहुरावे आसे अंबिशा बड़ी ए जियो से गुण मंजना आवनी हौंक जी दोस तरयो जियो क्या गुण तेरे विथरा हौं क्या क्या किन्ना तेरा नौ जियो एक तटोल न अंबड़ा हौं सद कुरबान तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हौ इनी टोली भुली अस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरलिया बग बहठे आए जियो सातन चली सोहरै क्या मोह देसी अगे जाए जियो सती सती चाल थिया भुली वाटड़ी आस जियो तै सह ना लहु मुती अस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागणी मैं दोहागण काई रात जियो लिख कत हे ना छूटी खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पारे उतार सुख टल गुर सेवियन एहनिस सहज सुभाए दर्शन परस आय गुरु का जन्म मरण दुख जस भाए दर्शन परस आय गुरु का

दुख सोग काटायो डेरा, आनंद मंगल विश्रामा, मन बांछत फल मिले अचिंता, पूरन होए काम इहां सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवण जाने निरभाओ पाए हृदय नाम वसिया, अपने सतगुर के मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे।

शब्द जाऊं की आरती साजी की अदास फुल चुप मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे

हम आप गुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुकह टल गुर सेवीऐ, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होए सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है, सवना दाविसाहु। सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर सांदे जिस पास

माया मोह मगन अंधियारे, देवन हार ना जाने, जियो पिंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माने। माया मोह मगन अंधियारे, देवन हार ना जाने, जियो पिंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहियो प्रभु स्वामी, जो किश कर है सोई सोई जाने, रह न कछु है शानी। रहाओ जिहवा स्वाद लोभ मद मातो, उपजे अनक विकारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया, होमै बंधन के पारा। दे किवाड़ अनक पढ़ दे मह, पर दारा संग फाके। चेतर गुपत जब लेखा मांग है, तब कौन पढ़दा तेरा ढाके। दीन दयाल पूरन दुख भंजन, तुम बिन ओट न काई।

दीन दयाल पूरन दुख भंजन, तुम बिन ओट न काई। काढ़ लिहो संसार सागर मह, नानक प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत बछलिया नाथ नाथे, शरण नानक पुरख चुत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरण आई। चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एक लिव लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कोह नानक किरपा पई, प्रभ पए सहाई। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए, करते का होए विचारो। तित कर गाव हो सोहिला, शिव रिह सिरजनहारो। तुम गाव हो मेरे निर्भउ का सोहिला, हो बारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन, देखे गा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पाव हो तेल। देहो सज्जन आसीसड़िया, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहुचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो घर राख बड़ाई तोए रहाओ, बिसोए चसया घड़िया पहरा। थिती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के ते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप माले आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाज अंत फेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे कौ, सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग कौ, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा ही, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा ही।
ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵੈ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ।

0: राम रसक नानक गुरे राज जोग ते माणियो।
1: सतयुग ते माणियो छल्यो बल बावन पायो त्रेते ते माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
2: गुण गावे रविदास भगत जय दीप त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जग छायो सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जग छायो।
3: गुण गावे पयाल भगत नगाद पयंगम महाद्यो गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार है ब्रह्मा गुण उच्चर है जिन कम सबसठ सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो।
0: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो मां ताता गुण रवे जेन चकर वै कहायो गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुण संग रहंतो दूर बापुरुर अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो।
1: जग और न जाए महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गे मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मज चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रतश हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
4: राय चोग तखत दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रकाश गुरु अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस किन्ने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कलयुग राखे पत अगन देखत गत चरण कवल जास साबित मान्यो मान तब हे पयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर रामदास।
1: जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खेन जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाव निद पावै सोई रामदास गुर बल भाण मिल संगत धन धन करो जिह सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरहो नरहो।
5: अंत न पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी फुन भेद बेरंच बेचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत हर जन माहे तरी।
0: जाको मुन ध्यान तरै फेरत सगल जुग कब हूँ ककौ पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको सेव मुन गहनात जात कबिलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा

रहन सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख हो सिफत संबंधी नूर अरसह कुरसह उदिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साह सिर साह जिस पा

जिस पास बैठिया सोही सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, श्लोक महला तीजा। सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो पाओ, ओसनो सुख ना उपजे, पावे सौ गेड़ा आवो जाओ। सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो पाओ, ओसनो सुख ना उपजे, पावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले, सच्चे स्यों लिबला। महला तीजा। ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना हो वई, हौ मैं शब्द जलाए। कूड़े की पाल बिचों निकले, सच वसे मन आए। अंतर शांत मन सुख होए, सच संजम कार कमाए। नानक पूरे कर्म सतगुर मिले, हर जियो कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसका कर दीवान हर होवे, तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। तिसको तलकी किसे दी नाही, हर दीवान सब आन पैरी पाया। मानसा कहो दीवान हो, कोई नस भज निकले, हर दीवान कोई किथे जाया। सो ऐसा हर दीवान वसिया, भगतें कै हिरदै, तिन रहंदे खोहंदे आन, सब भगतां अगै खलवाया।
ਹਰ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਧਿਆਇਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਸਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओहकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथमा भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दाते